0: इस वक्फे के बाद आप सुनेंगे नातों पर मबनी प्रोग्राम महफिल नात। सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
2: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
3: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
4: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
5: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
6: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:00.

सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शेयर रेडियो इंस्पायर एफएम है।

आजकल आपके दरवाजे पर मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करने के बहाने और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके चोर आपके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसलिए होशियार रहें और दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

बाल की परस्तिश राइज करने की भरपूर कोशिश की और इसराइल के शहरों में अलानिया बाल के नाम पर कुर्बानियां की जाने लगी। यही जमाना था जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम यकायक मंजर आम पर नमूदार हुए और उन्होंने जिलात से आकर अखियाब को नोटिस दिया कि तेरे गुनाहों की पादाश में अब इसराइल के मुल्क पर बारिश का एक कतरा भी न बरसेगा, हत्ता कि ओस तक न पड़ेगी। खुदा के नबी का यह कौल हर्फ बहर्फ सही साबित हुआ और 3.5 साल तक बारिश बिल्कुल बंद रही। आखिरकार अखियाब के होश कुछ ठिकाने आए और उसने हजरत इलियास को तलाश करा के बुलवाया। उन्होंने बारिश के लिए दुआ करने से पहले ये जरूरी समझा कि इसराइल के बाशिंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन और बाल का फर्क अच्छी तरह बता दें। इस गर्ज के लिए उन्होंने हुक्म दिया कि एक मजमा आम में बाल के पुजारी भी आकर अपने माबूद के नाम पर कुर्बानी करें और मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बानी करूंगा। दोनों में से जिसकी कुर्बानी भी इंसान के हाथों से आग लगाए बगैर गैबी आग से भस्म हो जाए उसके माबूद की सच्चाई साबित हो जाएगी। अखियाब ने यह बात कबूल कर ली। चुनाचे को किरमेल यानी कारमेल पर बाल के 850 पुजारी जमा हुए और इसराइलियों के मजमा आम में उनका और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में बाल परस्तों ने शिकस्त खाई। हजरत इलियास ने सबके सामने ये साबित कर दिया कि बाल एक झूठा खुदा है, असल खुदा वही अकेला खुदा है जिसके नबी की हैसियत से वो मामूर होकर आए हैं। इसके बाद हजरत इलियास ने इसी मजमा आम में बाल के पुजारियों को कत्ल करा दिया और फिर बारिश के लिए दुआ की जो फौरन कबूल हुई, यहाँ तक कि पूरा मुल्क इसराइल सैराब हो गया। लेकिन इन मौजज़ात को देखकर भी जनमुरीद अखियाब अपनी बुतपरस्त बीवी के शिकंजे से न निकला। उसकी बीवी इज़ाबेल हजरत इलियास की दुश्मन हो गई और उसने कसम खा ली कि जिस तरह बाल के पुजारी कत्ल किए गए हैं उसी तरह इलियास अलैहिस्सलाम भी कत्ल किए जाएंगे। इन हालात में हजरत इलियास को मुल्क छोड़ना पड़ा और चंद साल तक वो कोहे सीना के दामन में पना गुजी रहे। इस मौके पर उन्होंने अल्लाह ताला से जो फरियाद की थी उसे बाइबल इन अल्फाज में नकल करती है। बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजबहों को ढाया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं ही अकेला बचा हूं सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। 1 सलातीन बाब 19 आयत 10। उसी जमाने में बैतुल मक़दिस की यहूदी रियासत के फरमारवा यहोराम ने जहोरम ने इसराइल के बादशाह अखियाब की बेटी से शादी कर ली और इस मुशरिक शहजादी के असर से वही तमाम खराबियां जो इसराइल में फैली हुई थीं यहूदिया की रियासत में भी फैलने लगीं। हजरत इलियास ने यहां भी फरीज़े नबूवत अदा किया और यहोराम को एक खत लिखा जिसके ये अल्फाज बाइबल में नकल हुए हैं। खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तू न अपने बाप यहूसफ की राहों पर और न यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला बल्कि इसराइल के बादशाहों की राह पर चला है और यहूदा और यरूशलम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया जैसा अखियाब के खानदान ने किया था और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख खुदावंद तेरे लोगों को और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा और तू अतड़ियों के मर्ज से सख्त बीमार हो जाएगा यहाँ तक कि तेरी अतड़ियां इस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती चली जाएंगी। 2 तवारीख बाब 21 आयत 12-15। इस खत में हजरत इलियास ने जो कुछ फरमाया था वो पूरा हुआ। पहले यहूराम की रियासत बैरूनी हमलावरों की ताकत से तबाह हुई और उसकी बीवियों तक को दुश्मन पकड़ ले गए, फिर वो खुद अतड़ियों के मरस से हलाक हुआ। चंद साल के बाद हजरत इलियास फिर इसराइल तशरीफ ले गए और उन्होंने अखियाब को और उसके बाद उसके बेटे अखजिया को राह रास्त पर लाने की मुसलसल कोशिश की, मगर जो बदी सामरिया के शाही खानदान में घर कर चुकी थी वो किसी तरह ना निकली। आखिरकार हजरत की बददुआ से अखियाब का घराना खत्म हो गया और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुनिया से उठा लिया। इन वाकयात की तफसील के लिए बाइबल के हस्ब ज़ैल अबवाब मुलाहजा हों, 1 सलातीन बाब 17-18-19

0: इन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नसब का रिश्ता बना रखा है, हालांकि मलाइका खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरिम की हैसियत से पेश होने वाले हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह उन सिफात से पाक है जो उसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। मलाइका,
1: असल में मलाइका के बजाय अल जिन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाज़ अकाबिर मुफस्सरीन का ख्याल है कि यहाँ जिन का लफ्ज अपने लुग़वी मफहूम यानि पोशीदा मखलूक के लिहाज से मलाइका के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मलाइका भी असलन एक पोशीदा मखलूक ही हैं, और बात का मजमून इसी बात का तकाजा करता है कि यहाँ अल जिन्ना के लफ्ज को मलाइका के माने में लिया जाए।

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.

अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से राब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।